बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। सो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक ही कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम बता देवे की गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में यही बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

कब से जब से इस हसीना ने जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ
0: और

0: इतना मत चमक, ए चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को

0: वाले से होने लगो, बताए कैसे? यार मोहब्बत मत करना, यार मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यार मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवाब सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना

जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान, तो कब

बहुत दिन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, बहुत दिन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

0: थे गए आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी।

0: कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।
1: अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।
0: कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी।

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

भजन कऊ सिया रघुवर के।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रूसी हुए लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, अब टेस्ट तो

0: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
1: भाई वाह,
2: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
1: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
0: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
1: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ।
3: उगती है जमीन के नीचे

0: सब्जी लाल।
1: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
1: बिल्कुल सही, गाजर जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
1: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
0: रुको रुको, सोच ले दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
1: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
1: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
1: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां होती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्तों कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसे का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्तों सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक किसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने, कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ, तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ, फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवान है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
7: बाय। मजा आया ना।

0: दोस्तों, मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते, तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बनाकर उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है, तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना, तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनिबे बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा दे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो यू के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक

0: का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

और मिल के धसान जिनको पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान तो जितनी गर्दी उतनी बरसात।

पाई कौशल्याची पदवी पाई गोदी खेलत रहे रघुराई प्रेम भाव के भूके भगवन प्रेम भाव के भूके भगवन वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखंड प्रेम भाव के भूके भगवन वीरन

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन, संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपनी बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं।

0: और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, तो सामने ठीक खड़े हैं जहाँ पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है,
0: बिल्कुल,
1: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है, जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के सम्माहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए, जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251

0: शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी हैं, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप यही के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करे यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फलपूर रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें, और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है, यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र महाराज की हमने देखी है, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: और उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का, सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद ही आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवत राजन के कुंवर और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ,
1: अच्छी चास है उनकी दोस्ती।
2: हाँ,
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जा गए।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपने घोरों मस्के भी अपने घोरों मस्के।
2: हाँ,
1: अब जब वन में पहुँच गए।
2: हाँ,
1: तो जा शिकार खेली, बा शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर कर गया।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले कल बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल दे के। अब राजन को तो बस बीरन हती अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: अब भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हो बादशाह। तो बस बीरन ने जिसे बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कल कवैया कहाँ की जानी छटे कल ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घे गो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे।
2: जा सही के
1: नाव खो सब पतो है। नाव खो तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो। बस अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोली कर ले कब बोली कर ले ये राजन के राजा बोली कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कितने चली जावे। अरे बोली कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: नाव हो गए, बादशाह हो गए, बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चलिए ससुराल के जाना। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी तो बा में बीजक लगवाओ तो के जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटन लगी, उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी। तो बीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बने बीजक बाँचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बाँचो बा में सू में गली अलग अलग। बीरन हो बदमाश, बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: तो बीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में और वह बीजक को भरा दो। अगर हमारे आ गए जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बाचे जैसे संग छूट गो इसे कह हमारे जैसे सारे
2: चलेंगे
1: तीनों
2: जने।
1: जा तो बीजन बदमाशी पे रहो तो बस अब राजा पानी पी भी गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो। तो राजन ने अपने खोबन की उलीच उलीच के माए
2: धो दाओ
1: और फिर उगे बाँचो बाँचो बाय सुबह ने उनमें प्रधान पूरा लिखो।

जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा बीजन के कुमार को रास्ता गई। दोनों जने तो बोले क्यों बे बीजन, बोले कहिए राजन के राजा, बोले तू बहुत बदमाश है, बोले कल्ले पुरखन को बीजक ने बता दिया है, हट कर ले के हम अपनी ससुराल जाते हैं अपने ससुराल। बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई। बोले कल्ले जो पहले आगे

0: जी राजन के संगे चले।
1: सही है।
0: अरे हमारे वर्ग के संगे का चले, हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं। राजन की कीमत और सदाई का दूरी जा रहे गिर अपने सतारे चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास। बोले कल्ले सुताया कब बोले कल्ले कल ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है। इसे पानी को देखो। बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माए पानी अपन वन में हेंगे। बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना का के। बोले कल्ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़िए देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल।
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जरूर। बोली कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जित गए कि हाँ बाहर आराम से भी नगर चले गए। तो उतर काकस का हाथों के जोन वाल लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल्ले सुताई का बोले कल्ले ये राजन के राजा बोले कल्ले उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए। बोले कल्ले महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम तो। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ। बोले कल्ले महाराज कल्ले तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया वो हम खुद प्यास में मरी जा रहे। अरे बोले कल्ले बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे ताला ताए को। बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नल कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा हां फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जोन
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है।

0: तया कबूले कर ले राजन की राजा।
1: हाँ।
0: सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं?
1: सही कही,
0: बोले कर ले नहीं, अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ।
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ।
0: भूले मोसा।

अपने गली में बता दो सो काऊ के द्वारे में पहुँच जाए। अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल की जाए, इनको बदन शरीर है कैसे, मुंह करने मायक हो और पूछ करें इंतायक हो कई के। अब जाइए से बताया सुनने के बाद माँ से बोली।

अलिया लेखो बता दियो रे सो

0: क्या बात भाई।
1: अच्छा
0: वाने नली ने बताई
1: हाँ।
0: ना वाने बदन काड़ो जल नीर में रहेगा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली।
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गांव के लाने तैयार हो। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्ली सफरों और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ये हथी से जात है भवन द्वार सत्य अक्का को देखो तो ससुराल सुबने द्वार है उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुबी घरवाओं को बंद। अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल क्या अब तुम
1: दबा भी नहीं थे ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कर लगे हो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला थे जी
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवती सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे गई भोजन के लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोले बाबू
0: हाँ, सही है।

0: में टाठी सरका के मोए कच्ची अब अभी खुल गओ के जई है हां
1: सही कह रहे जब बात दई के होते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने मां टाठी मारी सरका के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन के जी जो बाप बांधी ओ बाप नी बांधी ओ बस टाठी मारी जो कर कमे लग जाके कर लगा है काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई और फिर मैं आऊँ
1: जैसे टाइम लगता
0: है बोले कल सुन ले

0: सुप्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने तैयार हो गए जहाँ से तरा हुआ उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पने चवन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पने चा पीटने के तन दिन तो भी आगे बड़ी आगे
1: हाँ हाँ एक भी दे रहे
0: थे एक भी दे रहे थे ना क्योंकि कसे जो सभी लोग आओ जाओ तो बस जो राजन का हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल के क्या है जो ऊपर का पने चा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के जो नो राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे अब अति बेसु निकल के और बस फिर कड़ी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दो बने रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चटे

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की कई जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: ये जाओ तो उनने हदीसो जैसे कछु पुटिया पर मुद की कोई रानास में ले गए
1: फिर मई खो पुटे पार ले गए
0: मई खो वही जहाँ उनकी राना सती फिर पहुंच गए
1: भाई
0: सतकंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन में है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन में ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मोर भूल गई बन गई और असम दोहा दे रही संत बाद

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं से, लेकिन बाने खेल दो हाँ जाकर।

0: वो नहीं जग रहा हो
1: तो कूद कब उठे थे।
2: सही है का हो
1: का हो
2: कते दुनिया भगत जा मेरे विश्वना कर जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पता होगा क्या रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दो हाथ कह रही है ऐसी।

0: लड़की लड़का से लड़की भाली रे सो मेरे पे ब्याजी। अरे ऐसी सासों का काम की है तेरी कुखन बांझई हो जाती। ऐसे सब कुछ चाहे तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो कर गया है ना यार सुबह पटक थार जब थार पटक के में भाग आई सुबह अपने घर में अब रात को समझ जा कहाँ जा रहा है जो सभी लोग हो सोने घोरो मस्को चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई में विदा उनकी कई गो में खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा था जे घरे चले गई। बस आओ अभी हतीशो अब पीने हकावे बारे हतीशो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई शिव भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाज जी ने हकाई सुबह हका के हो वह सब कहीं ऐसी और चली होंगे तो शाम हो गई से एक बमूरा को पिलो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए बस के में अब वो लेकर ले सुनो सुता का वो लेकर ले का कल ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने गई के ठीक है सो सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरान आने के पत्नी लगाओ सो सताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को क्यों बे ये तीन पात में कहाँ खोल लिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए सो रानी की फार के मारे पातस लग की आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जज्जे सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती ये बजट बात बडोर बनी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर कि ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इनसे कचू के ले सुबह सुनने थी तो घोरो भंसाई रात भर को बड़ा सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नीक चावा पट्ठो को घोरी में सुबह दूर पड़ी सुनने कही थे रानी मैं

एनर्जी थी, हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अभी सुन अलवारे के से चले गए। ये अपने भवन को चले गए और रानी ने अति से कहा कि नस्खो वेद घरवा नहीं और बाने हकाओ हका को रानी को गाड़ी हकाऊ थी मैं इसको हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्य से कचुअती से राजा गिलंड की बाग में गई।

ज्यादा जारे सुवन ने भज्जा घर वन ने नाय के तूपी माय की बोलन्या तूपी सुबह दिया थी जो रानी वो तो मालिन है जिसे मालिन गोली गोली कर लेगा ये कौन कहा की पाप नारी कहती है तूने एक मुआ रानी ने वो मालिन खोल बहू में भीतर काल में बाबा में बीरा दे दे अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो रही है की भी तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई ऐसे कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हती राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती बा सो मालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन खोल ले जावे सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इते आओ तो हम आज बगीचा घूमे आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बा राजन की लड़की रहे राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो कोई राजा की लड़की सुबह जैसे तैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे शुरू घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ बादशाह ने हती सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवाली आउती बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखता बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को वन में छोड़िया सो उनने अति सो घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे वो निकल ले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़े फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जने नाव नहीं गए वे दो ही गए सो वो निकल ले अब उनने हती सो वह गाड़ी वर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डेरा दो जन ने गए सो उन्हें भैया मालिन ने उन्हें घड़ी आई बोले कल्ले क्यों रे कहा कि हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात और हमारे राजा सुन सुन तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साझा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कौन जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दिली थाड़ी करी सो मालूम है कि जो राजन बोली कर ले दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश करता बगीचा को सो उनमें चढ़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे बोले कर ले जब तभी ऊंची हती भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तो मूर काट लीजिए और हमसे बात करे तो हम मूर काट लें बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ही बोले बैठो अब उनने हतो एक बीजक राजा गिलंद कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे सुबह भी है तो

0: सलाह हो गई सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ देखो भाई राजा गिरंजी ने जो बात को बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कल नहीं ये राजा गिरंज को बाग कटे चल जी और जो मकान गिरे चल जी। सुबीर ने कही तो ठीक है सुबीर जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जावे जावे सुबह रानी जो बबीती अती से छाजी तो दातन कर रही थी सुबीर जग लाई थी बबी जग बबई लोटा कर रखती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गई जो बादशाह ने बांच ले बीजन बांच ले बादशाह ने बीजन ने बांच बोली कर ले ठीक है बोली कर ले क्या तुम तसला पटकट पटकट वो तो सार पांच एक ही पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कछु तुम ना तुम सानो हम जे डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डार भी के लाने तनक तसला में से गिलास पहुंच वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की सो उन्हें अच्छी सो अब जो खिलाड़ी है तो उन्हें वो लूटा दाओ वो लूटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ये गेंद की बल्ला के और बल्ले लूटा बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजा छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब ये गए पकड़ा सुबह देख दाग के कल ये कौन मजबूर है ये तो कोई राजा है सकते क्यों इनसे भूलत कैसे हैं बोली कल महाराज तो नहीं है मजबूर संजू तो जो राजा पर बोली कल या पर बोली पकड़ लिया बोली कल आ रहा चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक वो बीजक उनने वहां से लाओ तो पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही है सुबह से लेकिन भाई उनकी सलाह तो बहत गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तुम काट ले सुबह राजा का उस बात ना कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगिया एक दिन आते बोली मेरे को क्या के पहुंचे जैसे राजा ने कही बोले कर ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले के दी थी फिर वह लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी होने दी हती बात तो हो गई।
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सबजन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का के रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करें और सुने, और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पटक गया हम केना गुलाटी कमगा ऐसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे
2: जी? हल्को हल्को काम कर अपने दो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: का वर्क हम करा बस किए काम वाम हम कहते नहीं करते।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का कसके विचार को जब तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का?
2: बुढ़ापे के तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहे तो भी हमें ले रहा है हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ।
2: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ तू सच में
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने।
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आपका क्या सर?
2: सेवा खुशामत सब करा चुनगे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु नानिया कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च किया ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते
1: हैं। भाई आपको कैसे कटा था?
2: दो बच्चे उनका दिमाग लगा दे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी नहीं दिखा तगड़ा नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सगड़े।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का
2: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा रहे।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वाबे की में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी अरे पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारा बाल बच्चे जो चीज मिल जाए हमारा मिल जाए दूसरी की जठाने बिना मिल गए दीवानी बिना मिल गए ऐसी समस्याएं मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं था प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
2: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम नहीं
1: करना। तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको काके वो है
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करे
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप बताओ
2: यात्रा ना कथी
1: यही बात है आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
2: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं के रूप है जो बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठुकरा मतलब आगे चली जाइए तो फिर मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
2: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा

0: हैं, देने वाले बच्चे चले जाती थी, आता हूँ मैं, अब पैसे निकलते होते जा कर है, अरे मतलब चले जाओ पैसे आके चले जाए, अब जैसे पैसे ही नहीं जाता तो कहाँ जा रहा है, क्या करे, रोटी नहीं खा पा रहा है, आँख से कमजोरी हो गई, पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है, पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और काके वो चाउट आप
0: जी उचाउट के आराम चाउट बस मिल जावे, पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को सामान खाने दीवे, तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चला उतने।
1: ठीक है दादा, जहाँ आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो भैया, अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है, और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं, तो अपन और सुनत है एक गीत खो, और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो, सवई पंच भैया सुनो।

संघ का नामदेव और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

बात हो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी का कह रहे। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं। और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आओ थे कार्यक्रम को, सुनो जी का कह रहे। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा, और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

जे काकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए वक्त है अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए,
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और का हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा।

0: गीत गाओ सुना दीजिए थोड़ा बहुत।
1: चलो
0: बोल तो हाँ बोल याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

0: नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है, अच्छा गीत के बोल।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो एक बार

देख दिगंबर शिव शंकर का और भालचंद्र मुस्काए हैं और टपका अमृत बिंदु धर्म गोशाला पर आए।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने तिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

0: बोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो बुंदेलखंड नंबर 1054 सर।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्ते।
0: कचहरी।

0: माताजी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा रहे
0: हैं। धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।